0: on the radio,
1: web,
0: and mobile app.
1: Metro Plus.
0: Metro Plus, your connect.
1: Your connect.
2: The 2026 population census is underway. Selected households will get a notification letter in a purple envelope from the Census and Statistics Department and can do the survey online, anytime, anywhere. Or call 182026 for a telephone interview. Census officers will also visit households for interviews if needed. All collected data will be kept in strict confidence. Online census. Simple, convenient, and secure.
3: Metro Plus AM 1044 presents John Bon Jovi on life.
4: Life is for the living. You have to make the most of it.
3: On family.
4: Live your life with your family, with your friends, with your music. But always live your life without drugs. Because living your life with drugs means you have no life at all.
3: Life with drugs. No life at all.
5: This program is brought to you by Home Affairs Department. The views expressed within this program are that of the host and their guest and does not necessarily reflect the views of this station, Metro Plus AM 1044.
6: Namaste, Sat Sri Akal, Salam, Kiddan Ho Ji, Sare Vadiya, Appa Ji, Bahut Vadiya. Aaj hai 3 July 2026. Aaj hamare paas zyada announcements nahi hain. आज हमारे पास तकरीबन 1, 2, 3, 4 अनाउंसमेंट है तो 4 अनाउंसमेंट सुना के आपके सारे गाने लगा देंगे फटाफट ओके आई थिंक वी गोना प्ले लॉट ऑफ सॉन्ग्स टुडे होपफुली विद इन 1 आवर जितने लगा सकेंगे उतने लगाएंगे जी और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो मैं अपना काम करके शायद निकल जाऊं और आप के बाकी के फिर गाने जो है नॉन स्टॉप चला दूंगा आपके वो जो डेडिकेटेड टू इनके लिए उनके लिए वो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गाने लगे ठीक है चलो शुरू करते हैं जी पहला अनाउंसमेंट दिस इज रिसीव रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग हांगकांग में महिलाओं में सर्विकल कैंसर बहुत कॉमन है रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको बहुत हद तक रोका जा सकता है अगर आपकी उम्र 25 से 64 साल के बीच है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है तो रेगुलर सर्विकल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। बहुत सी महिलाओं जिनको HPV वायरस है या कैंसर शुरुआती स्टेज में है उनको कोई लक्षण नहीं दिखते याद रखो चाहे वो लक्षण ना हो HPV वैक्सीन लगा हो या मेनोपॉज हो चुका हो तब भी स्क्रीनिंग करवानी बहुत ज़रूरी है स्क्रीनिंग करवाने के लिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स फैमिली डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट या NGOs के पास जा सकती हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में बुकिंग के लिए कॉल कीजिए 3166631 जनवरी 2026 से वुमेन वेलनेस सैटेलाइट्स में HPV सेल्फ सैम्पलिंग की सुविधा शुरू हो गई है जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो है ये हांगकॉन्ग आइलैंड के लिए है 2855-1333 कालोन के लिए है 2855-1222 न्यू टेरिटरीज के लिए है 2851-1722 ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.cervicalscreening.gov.hk पर जा सकते हैं अपना ख्याल रखो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ ओके आते हैं जी हमारे पहले गाने पर ये

0: अकबरार ने गाना रिक्वेस्ट किया है एंड दिस इज फॉर चार्ली एंड राणा और गाने का नाम है जी सोलो बाय हार्वी एंजॉय द सॉन्ग.
1: This is not about them. This is about me. And my name is Harvey. Harvey is Harvey for a reason. Yeah.

0: All right, guys, welcome back. आते हैं जी हमारे तीसरे अनाउंसमेंट पर. दिस इज रिसीव कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग. आज ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लो. हांगकांग में अंतर का कैंसर बहुत कॉमन है. रेगुलर स्क्रीनिंग करवाओ तो इसको जल्दी पकड़ सकते हो और रिस्क काफ़ी कम हो जाता है. साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाओ. शुरुआती स्टेज में इस कैंसर के कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है. 50 से 75 साल के हांगकांग रेजिडेंट्स जो अभी ठीक हैं उनके लिए स्क्रीनिंग फ्री हो सकती है. अगर रिजल्ट नॉर्मल आए तो हर 2 साल बाद फिर स्क्रीनिंग जरूर करवाओ. ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.colonscreen.gov.hk पर. हेल्दी रहने के लिए आपको क्या करना होगा? रोज एक्सरसाइज करो, दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार सब्जी खाओ, अपना वेट हेल्दी रखो, स्मोकिंग और शराब छोड़ दो, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो. आज ही स्क्रीनिंग करवाओ. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग. आई थिंक दिस वन इज रिक्वेस्टेड बाय गुरप्रीत और या डेडिकेटेड टू जितेंद्र सिंह. और ये जो गाना है, गाने का नाम है सी वॉक by Navan Sandhu. Enjoy the song.
1: Can't discuss them power moves if people are not as hungry. It just sounds like you're bragging. Not a brother love.

0: gets done.
1: All right, guys, welcome back. Aate hain ji humare aakhri announcement par. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. Is season mein alert raho. Flu, COVID-19 aur saans ki bimariyan abhi bhi chal rahi hain. Achhi personal aur ghar ki safai rakho. Personal hygiene aur ghar ki safai rakho. Khansi ya cheek aaye to tissue se muh aur naak dhak lo. Haath ko liquid soap aur pani se kam 20 seconds tak dho lo. बीमार फील हो तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो. गवर्नमेंट का 2025 और 26 फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है. हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर. एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है. कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल के बुजुर्ग और 65 साल के ऊपर के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमजोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं. ज्यादा जानकारी के लिए आप www.chp.gov.hk पर जा सकते हो. अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो. ऑलराइट गाइस, ये जो गाना लगने वाला है वो अमृत संधु का है. अमृत संधु ने रिक्वेस्ट किया है. प्रेम ढिल्लों का गाना है और गाने का नाम है जी पुत जम तिलाओ. एंजॉय द सॉन्ग.

ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक. ये जो गाना अभी लगाया था वो अमृत संधू ने रिक्वेस्ट किया था अपने दोस्तों के लिए. अमरीका भाई, पंकज वीर, पंज ग्राई, अफनान पठान, हाँ उनके लिए. ऑल राइट, अगला गाना जो लगने वाला है वो जो रिक्वेस्ट किया है वो खान भाई ने रिक्वेस्ट किया है. पुत बेगाने लब हीरा सिंगर है और डेडिकेट किया है वाली जान बसु चट बरार सिंह अमरीका भाई. एंजॉय द सॉन्ग गाइस.

ऑलराइट गाइस, अगला गाना जो लगने वाला है वो मलिक जैन ने रिक्वेस्ट किया है, और गाने का नाम है ट्रस्ट मी आई नो बाय बिग बॉय दीप, और मैसेज है डेडिकेटेड टू माय फ्रेंड इन प्रिजन। फ्रेंड का नाम है बिलाल एंड पप्पू एंड मिर्जा। तो हाँ जी, थैंक यू ब्रो। ओके चलो, गाना एंजॉय कीजिए। दिस इज ट्रस्ट मी आई नो बाय बिग बॉय दीप। एंजॉय द सॉन्ग।

और गाइस मैं लेता हूँ जी अभी आप सबसे अलविदा, क्योंकि शुरुआती में मैंने बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो पहला हाफ तो मैंने कर दिया जी, अभी बाकी का जो हाफ है वो नॉन स्टॉप गाने लगने वाले हैं, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आने वाली। सो आई विल जस्ट टेल यू ब्रीफली कि कौन कौन से गाने किस किस ने रिक्वेस्ट किए हैं, लेकिन वो जो आपके मैसेजेस हैं वो मैं नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी। तो अगला गाना जो लगने वाला है, इट्स सजना बाय यशिल शाहिद, इट्स रिक्वेस्टेड बाय अनोनिमस, द पर्सन डज नॉट वॉन्ट्स टू बी नेम्ड, सो वी रिस्पेक्ट दैट। उसके बाद मलिसा ने गाना रिक्वेस्ट किया है, एंड गाने का नाम है डेथ रो निंजा, इट्स बाय निंजा दीप चंदू एंड जे हिंद। उसके बाद कल्पना ने रिक्वेस्ट किया है गाना ड्रिपी बाय सिद्धू मूसेवाला। देन वीव गॉट सोनिया कौर हु रिक्वेस्टेड गॉड स्पीड बाय टाइसन सिद्धू। देन वीव गॉट यासीन हु रिक्वेस्टेड स्विचिंग लेंस बाय तेगी पन्नू। देन वीव गॉट मलिक बाबर, मासूम शर्मा। फिर आते हैं